0: रिसर्च को लेकर आप सबके कमिटमेंट से ही हो सकता है। इसके लिए देश को आपसे अपेक्षा भी है और सबसे बड़ी बात आप पर भरोसा भी है। साथियों, अब मैं आपसे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन की बात करूंगा। जब हम बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए प्रारंभ करते हैं, निकलते हैं, तो एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी हमारे सामने आता है। ये डिस्ट्रैक्शन होता है एक दूसरे से कंपैरिजन का, किसी को क्या पैकेज मिला, कौन किस कंपनी में गया, किस शहर में गया, किस देश में गया, किसने स्टार्टअप शुरू किया। आज के सोशल मीडिया के दौर में ये तुलना कभी खत्म नहीं होती। लेकिन याद रखिए, जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है, आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं, खुद अपने आप से है। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिएगा, साथ ही अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। साथियों, मैं सभी स्टूडेंट्स को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके माता पिता को, परिवारजनों को विशेष बधाई देता हूं। आपके शिक्षकों को और उन सभी लोगों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।
1: Bangladesh has ruled out a return to cricket for former star Shakib Al Hasan after he joined a media event in New Delhi with ousted former Prime Minister Sheikh Hasina. 39-year-old Shakib joined the event by phone on Wednesday. This is 2 years after Hasina was removed from power from Bangladesh following a deadly crackdown. Bangladesh's sports minister Aminul Haq said that the government had previously taken a flexible approach towards Shakib, but now there was no room for him to return. Shakib, a former ally and Awami League lawmaker himself under ousted Prime Minister Sheikh Hasina, is currently in Sri Lanka playing franchise cricket. He faces murder investigations linked to the 2024 protest crackdown. Haq said if he returns to Bangladesh, he will have to face the legal process. The former all-rounder had planned to retire in 2024, but later said that he would play a full series before calling time. The cricket board cleared his return in January, but his New Delhi appearance has now sparked anger. Meanwhile, rights groups have long accused Hasina's former government of abuses, including the murder of rivals, suppression of opposition parties, rigged courts and one-sided elections. A Dhaka court found Hasina guilty in absentia in November last year of crimes against humanity and sentenced her to death. She remains in hiding in India. All right, viewers, now time to slip into a very short break. But before that, here's a look at all the climate stories making headlines across the world. I'm Shivan Jamna. This is VEON. Stay with us.

0: Now, the Indian Prime Minister attended to the most meritorious students. Now, addressing the young graduates, urged for greater participation and representation of women in academics. Only a few female students had received medals at the ceremony. The Prime Minister Modi also urged the youth to play a much greater role in building a Vikasit Bharat. And he said that the country's future capabilities now depend on its youth, pointing to new sectors being opened up for them.
1: भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है। साथियों, विकसित भारत की इस यात्रा में आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। उतना ही देश सशक्त होगा। इस सोच के साथ हमने कई ऐसे संकल्पन किए हैं जहां युवाओं के लिए एंट्री ही एक तरह से बंद हुआ करती थी। सरकार की आधुनिक नीतियों की वजह से आज देश में युवाओं के लिए नए नए सेक्टर्स भी बन रहे हैं। साथियों, पिछली बार जब मैं आपके सीनियर्स के कॉन्वोकेशन

0: Now, the Indian Prime Minister attended the IIT Delhi's 57th convocation, where he presented the Institute's top honours to the most meritorious students of the Indian Institute of Technology in the national capital. Now, addressing the graduates, the fresh graduates, the Indian Prime Minister urged for greater participation and also representation of women in academics. And the Indian Prime Minister noted that only a few female students had received medals at the ceremony. Prime Minister Modi has also urged the youth to play a much bigger role in building Vikasit Bharat. He said that the country's future capabilities depend entirely on India's youth and are being opened up for them by the government. Listen.
1: Bharat ki majboot neev ka saboot hai. Is majboot neev par आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है. साथियों, विकसित भारत की इस यात्रा में आपकी भूमिका बहुत बड़ी है. देश का युवा जितना सशक्त होगा उतना ही देश सशक्त होगा. इसी सोच के साथ हमने कई ऐसे सेक्टर्स ओपन किए हैं जहां युवाओं के लिए एंट्री ही की आधुनिक नीतियों की वजह से युवाओं के लिए नए नए सेक्टर्स भी बन रहे हैं. साथियों, पिछली बार जब मैं आपके सीनियर्स के कॉन्वोकेशन से

0: राहुल गांधी अटेंडेड दी छात्रों की गूंज प्रोग्राम एट केपी इन कॉलेज इन प्रयागराज. Large crowds of youngsters and students gather at the venue to attend speech. Now, speaking at the event, the leader of the opposition stated that the Indian youth potential can outpace the rest of the world. He further stated that India is the highest consumer of data and data is the currency of the 21st century. Listening, Rahul Gandhi had to say to the youth who turned up to listen to him.
1: 21st sadi mein agar desh pragati karta hai तो दो चीजों के बल पे करता है. यूथ पोटेंशियल जो आप में है और डेटा जो आप क्रिएट करते हो. हिंदुस्तान के पास यूथ है और सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा हिंदुस्तान में है. 1 GB डेटा प्रति भारतीय प्रतिदिन और प्रगति होगी, फ्यूचर होगा तो डेटा और आपके पोटेंशियल पे होगा. युवा प्लस डेटा इज इक्वल टू 21st सेंचुरी इकोनॉमी.
0: नेटफ्लिक्स इज टेकन फिल्म प्रमोशन टू अ होल न्यू हाइट विद अनयूजुअल स्टंट्स फॉर साइफाई थ्रिलर द लास्ट हाउस. A man is temporarily living inside of a fully furnished room that is built into a billboard about 30 feet above Los Angeles' Sunset Boulevard. The stunt recreates the film's central premise, with the man going about his daily routine while confined above the busy street. He also communicates with passers-by using a whiteboard, while Netflix has kept its identity under wraps. We'll leave you with these images. Thanks for watching.

0: Now, the Indian Prime Minister attended the IIT Delhi's 57th convocation, where he presented the Institute's top honours to the most meritorious students of the Indian Institute of Technology in the national capital. The fresh graduates, the Indian Prime Minister urged for greater participation and also representation of women in academics. And the Indian Prime Minister noted that only a few female students had received medals at the ceremony. Prime Minister Modi has also urged the youth to play a much bigger role in building Vikasit Bharat. He said that the country's future capabilities depend entirely on India's youth, pointing to the new sectors that are being opened up for them by the government. Listen.
1: Bharat ki majboot neev ka saboot hai. Is majboot neev par आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है. आपकी भूमिका बहुत बड़ी है. जब दुनिया सशक्त होगा उतना ही देश सशक्त होगा. इसी सोच के साथ हमने कई ऐसे सेक्टर्स ओपन किए हैं जहां युवाओं के लिए एंट्री ही एक तरह से बंद हुआ करती थी. सरकार की आधुनिक नीतियों की वजह से आज देश में युवाओं के लिए नए नए सेक्टर्स भी बन रहे हैं. साथियों, पिछली बार जब मैं आपके सीनियर

0: Now, the Indian Prime Minister attended the IIT Delhi's 57th convocation, where he presented the Institute's top honours to the most meritorious students of the Indian Institute of Technology in the national capital. Now, addressing the graduates, the fresh graduates, the Indian greater participation and also representation of women in academics. And the Indian Prime Minister noted that only a few female students had received medals at the ceremony. Prime Minister Modi has also urged the youth to play a much bigger role in building Vikasit Bharat. He said that the country's future capabilities depend entirely on India's youth, point to the new sectors that are being opened up for them by the government. Listen.
1: Bharat ki majboot neev ka saboot hai. Is majboot neev par आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है. साथियों, विकसित भारत की इस यात्रा में आपकी भूमिका बहुत बड़ी है. देश का युवा जितना सशक्त होगा, देश सशक्त होगा. इसी सोच के साथ हमने कई ऐसे सेक्टर्स ओपन किए हैं जहां युवाओं के लिए एंट्री ही एक तरह से बंद हुआ करती थी. सरकार की आधुनिक नीतियों की वजह से आज देश में युवाओं के लिए नए नए सेक्टर्स भी बन रहे हैं. साथियों, पिछली बार जब मैं आपके सीनियर्स के कॉन्वोकेशन से वर्चुअली जुड़ने का मुझे अवसर मिला था, तब मैंने युवाओं के लिए स्पेस सेक्टर में हो रहे रिफॉर्म्स की चर्चा की थी. तब तक इस सेक्टर में लगभग पूरा सरकार ही करती थी, लेकिन आज वही स्पेस सेक्टर हजारों युवाओं के लिए नए अवसरों का आकाश बन चुका है.
0: The images of rotten food and meat are emerging from prime Bengaluru eateries. The Karnataka Food Safety and Drug Administration is conducting sweeping raids and inspections after mounting complaints over food safety in the state. On the directions of the Karnataka Health and Family Welfare Minister UT Khader, 60 special teams conducted surprise inspections at three-star and also Bengaluru's five-star hotels and restaurants across the Silicon Capital. And what they found

0: Now, the Indian Prime Minister attended the IIT Delhi's 57th convocation, where he presented the Institute's top honours to the most meritorious students of the Indian Institute of Technology in the national capital. The fresh graduates, the Indian Prime Minister urged for greater participation and also representation of women in academics. And the Indian Prime Minister noted that only a few female students had received medals at the ceremony. Prime Minister Modi has also urged the youth to play a much bigger role in building Vikasit Bharat. He said that the country's future capabilities depend entirely on India's youth, pointing to the new sectors that are being opened up for them by the government. Listen.
1: Bharat ki majboot neev ka saboot hai. Is majboot neev par आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है. साथियों, विकसित भारत की इस यात्रा में आपकी भूमिका बहुत बड़ी है. देश का युवा जितना सशक्त उतना ही देश सशक्त होगा. इसी सोच के साथ हमने कई ऐसे सेक्टर्स ओपन किए हैं जहां युवाओं के लिए एंट्री ही एक तरह से बंद हुआ करती थी. सरकार की आधुनिक नीतियों की वजह से आज देश में युवाओं के लिए नए नए सेक्टर्स भी बन रहे हैं. साथियों, पिछली बार जब मैं आपके सीनियर्स के कॉन्वोकेशन से वर्चुअली जुड़ने का मुझे अवसर मिला.